0: बँक शैक्षणिक कर्ज नामको विद्या साधना
1: आणि हे शैक्षणिक कर्ज मिळते आहे फक्त 9% पासून. 5 लाखांपर्यंत तारणाची आवश्यकता नाही.
0: कर्ज मर्यादा 50 लाखांपर्यंत.
1: परतफेड कालावधी 5 ते 10 वर्ष.
0: आजच जवळच्या नामको बँक शाखेला भेट द्या. अटी व शर्ती लागू.
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार. आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां.
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है.
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के.
4: कार्यक्रमात हे गीत ऐकूयात पी सावळाराम यांचं शिकलेली बायको या चित्रपटामधलं. हे गीत ऐकणार आहोत पंडित हृदयनाथ मंगेशकर यांच्या स्वरात, संगीतकार वसंत प्रभू.

0: देशहिताच्या आव्हानाला सकारात्मक प्रतिसाद अढावतकर ज्वेलर्स।
1: आता योग्य वेळ सोन्याचं नवं करण्याची।
0: एक्सचेंज करते वेळी तुमच्या जुन्या सोन्याची व्हॅल्यू 1% वाढवून मिळेल
1: आणि मजुरीत 50% सूट।
0: तुमचं जुनं सोनं आहे भारताची नवी ताकद।
1: विश्वास नाशिककरांचा।
0: अढावतकर ज्वेलर्स, अगोरा कॉम्प्लेक्स, कॅनडा पार्टनर।
2: व्हिएतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
3: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: कार्यक्रमात आता ऐकूया सुधीर फडके यांच्या संगीताने सजलेलं गदी माडगुळकर यांचं गीत एकटी या चित्रपटामधलं। हे गीत ऐकणार आहोत आशा भोसले यांच्या आवाजात।

पल भेला, सारे जहां में मैं हूँ अकेला। दम है किसी में तो लाए हमारा जवान, मैं हूँ वो अलबेला सारे।

डाबर आमला तेल बालों को घना व काला बनाता है। इससे आपके बाल रेशम जैसे मुलायम हो जाते हैं और सर को ठंडक पहुंचती है। हमेशा इस्तेमाल कीजिए डाबर आमला तेल।

चुपके संगीत सपेरा सांप सुने सरसाए, सांप सुने सरसाए, साए साए सुरमा सा संग समाए समय।

0: अब मैं चाहते हूँ।
1: अजी ये क्या कह रही हैं आप?
2: अभी और गाइए।
1: चुप रहो भाई साहब, नाराज हो जाएंगे। और गाइए।
3: हाँ गाओ।
0: नहीं मैं और नहीं गा सकती।
3: गाओ,
1: आपको गाना पड़ेगा।
0: नहीं गाऊंगी।

0: यहां का काम तो शायद खत्म हो गया है।
1: अच्छा ही हुआ जो काम करते रहे, मैं समझ गई। अब आपसे माफी मांग लूं?
0: मुझसे?
1: हाँ, आज मेरी वजह से आपका अपमान हुआ।
0: तो क्या हुआ? तुम्हारे भले बुरे के जो जिम्मेदार है, क्या उन्हें इतना भी अधिकार नहीं कि तुम्हारी खातिर?
1: समझी, आप अभी तक मुझसे नाराज हैं?
0: नहीं, मैं तो जिंदगी से दूर भाग रहा था, एक ऐसे रास्ते पर से जहां आराम था न किसी पेड़ का छाया, धूल ही धूल थी अपनी नाकामियों की, जिसमें मैं अपने आप को खो बैठा था। इतने में तूने मुझे आवाज दी, मैं रुक गया। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं भी जिंदा हूं।
1: दीपक,
0: क्यों आवाज दी तुमने मुझे? क्यों याद दिलाई ये सब कुछ?

0: कान को बंद कर दिया।
1: दिल धड़क रहा है, जरा ठहर जाइए।
0: लेकिन मैं ज्यादा देर नहीं ठहरना चाहता।
1: मुझे भी जाने की जल्दी है अमर बाबू।